0: SBS, a world of difference. You're with SBS Hindi on mobile, online and on radio.
1: आप सुन रहे हैं SBS Hindi mobile, online और radio पर.
2: नमस्कार दोस्तों, SBS हिंदी के कार्यक्रम पर 5 जून 2026 की शाम और घड़ी में 5 बजते ही समय हो चला है खबरों की ओर रुख करने का. उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे. और आज के शो की शुरुआत हो इससे पहले हम इस धरती के पूर्वजों और कुलीन राष्ट्र के वुरुंजुरी और वुईवुरिंग लोगों को और उनके बुजुर्गों को सम्मान के साथ प्रणाम करते हैं. हम उन सभी आदिवासी और टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर भूमि के पारंपरिक मालिकों को भी आदरपूर्वक याद कर रहे हैं जिनकी भूमि पर ये कार्यक्रम सुना जा रहा है. ऑस्ट्रेलिया और दुनिया भर से हमारे साथ जुड़ रहे सभी श्रोताओं को SBS हिंदी का नमस्कार. मैं हूं भव्या पांडे और अगले 1 घंटे तक आपका साथ निभाऊंगी कुछ खास खबरों और गानों के साथ. आज के कार्यक्रम में बात करेंगे उस दवाई की जिसका नाम इन दिनों दुनिया भर में चर्चा में है, ओज़ेम्पिक. आखिर ये ओज़ेम्पिक क्या है, शरीर में कैसे काम करती है और क्या ये वास्तव में लंबे समय तक वजन कम करने में मदद कर सकती है. इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ एक खास एक्सपर्ट जुड़ेंगे. इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में बदलते साउथ एशियन वेडिंग कल्चर पर भी होगी खास चर्चा. शादियां अब केवल एक समारोह नहीं बल्कि एक संपूर्ण अनुभव बनती जा रही हैं, जहां सिनेमैटिक स्टोरी टेलिंग सोशल मीडिया अपनी भूमिका निभाता है. तो इस बदलती तस्वीर को आज ध्यान से समझेंगे. इसके अलावा शो में बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की बढ़ती आबादी के ऊपर. नए आंकड़ों के अनुसार देश की जनसंख्या 28 मिलियन के आंकड़े को पार कर चुकी है और इस वृद्धि में प्रवासन की बड़ी भूमिका है. पहली बार भारत में जन्मे लोग

ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय बन गए हैं और इसी पर एक खास रिपोर्ट आप तक लेकर आऊंगी। इसके अलावा आपको बता दूं कि फ्राइडे है तो हमारी भारत से खबरें भी होंगी ही और आज का सवाल भी आपको बता देती हूं। तो आज मैं आपसे जानना चाहती हूं कि ऑस्ट्रेलिया में बसने के दौरान यानी जब आप ऑस्ट्रेलिया माइग्रेट कर रहे थे तो आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या रही है, क्या था आपका सबसे बड़ा चैलेंज ऑस्ट्रेलिया में माइग्रेट करते समय, बताएं मुझे। नंबर है 04397997667। इसके अलावा आपके लिए कुछ बढ़िया से गाने भी लेकर आऊंगी जो कि शो के दौरान आपके लिए बजाती रहूंगी, लेकिन आपको मुझे 04397997667 पर बताते रहना है कि आज के कार्यक्रम में आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का शो और सुनते हैं आज का न्यूज फ्लैश। प्रस्तुत है 5 जून 2026 का न्यूज फ्लैश भव्या पांडे के साथ। फेडरल सरकार की हाउसिंग सपोर्ट योजना को लेकर राजनीतिक बहस लगातार तेज होती जा रही है। लेबर मंत्री मार्क बटलर ने विपक्ष की उन चिंताओं को सख्ती से खारिज किया है जिनमें दावा किया गया था कि स्थायी निवासियों को इस योजना का अनुचित लाभ मिला है। संसदीय समिति की सुनवाई में ये सामने आया है कि 2022 से अब तक करीब 51,000 स्थायी निवासियों यानी परमानेंट रेसिडेंट्स ने सरकार के 5% डिपॉजिट प्रोग्राम का लाभ लिया है जिसे लेबर सरकार ने योजना के विस्तार के बाद लागू किया था। विपक्षी नेता एंगस टेलर का कहना है कि इस योजना का लाभ केवल ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों तक सीमित होना चाहिए। इस बीच चर्चा ये भी तेज है कि कोएलिशन ग्रीन्स के साथ मिलकर संसद के ऊपरी सदन में सरकार के प्रस्तावित टैक्स सुधारों को रोकने की कोशिश कर सकता है। प्रस्तावित बदलावों में नेगेटिव गियरिंग को लेकर नए घरों तक सीमित करना और कैपिटल गेन टैक्स पर 50% छूट को हटाकर महंगाई से जुड़े रेटिंग सिस्टम में बदलना शामिल है। आपको बता दूं कि इस मुद्दे पर संसद में बहस और तेज होने की संभावना है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे ईरान के सर्वोच्च नेता से मिलने के लिए सम्मानित महसूस करेंगे ताकि महीनों से चल रहे संघर्ष को समाप्त करने के लिए बातचीत की जा सके। हालांकि एक्सपर्ट्स और राजनीतिक विरोधियों का कहना है कि ट्रंप पर दबाव बढ़ रहा है क्योंकि ये संघर्ष जिसे उन्होंने शुरुआत में एक त्वरित सैन्य कार्रवाई बताया था अब लंबे समय से जारी गतिरोध में बदल चुका है। इसी बीच अमेरिका ने क्यूबा के कई शीर्ष अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाए हैं जिसमें राष्ट्रपति मिगेल डियास कैनल और रक्षा मंत्रालय से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं। इन प्रतिबंधों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने देश की अर्थव्यवस्था को लेकर उठ रही चिंताओं को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि महंगाई जरूर एक चुनौती है लेकिन सरकार के कड़े आर्थिक फैसले सकारात्मक परिणाम दे रहे हैं और अर्थव्यवस्था कमजोर नहीं है। न्यू साउथ वेल्स में अधिकारियों ने एक अनोखी कार्रवाई के तहत हजारों कॉकरोच जब्त किए हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल एंड वाटर के अनुसार बाथर स्ट्रीट के एक कमर्शियल ब्रीडिंग फार्म से लगभग 1,00,000 कॉकरोच जब्त किए गए हैं जिसमें डुबिया और मेडागास्कर हिसिंग प्रजातियां शामिल हैं। ये कार्रवाई पर्यावरणीय नियमों और व्यावसायिक मानकों के उल्लंघन की जांच के तहत की गई है। वहीं विक्टोरिया के ग्रामीण इलाके से एक गंभीर हमले की खबर सामने आई है। पुलिस के अनुसार एक व्यक्ति को कथित तौर पर किशोरों के समूह ने चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। बताया जा रहा है कि पीड़ित व्यक्ति बेघर था और उसे बेडिंगो के एक सड़क पर सोते समय निशाना बनाया गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज और गवाहों से पूछताछ जारी है। वहीं वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में भी एक अलग मामले में 3 लोगों पर आरोप लगाए गए हैं। पुलिस का कहना है कि इन लोगों ने एक वांछित बाइकर को देश से बाहर ले जाने की कोशिश की जो कथित रूप से एक आपराधिक नेटवर्क से जुड़ा हो सकता है। वहीं बात करें भारत की तो भारतीय जनता पार्टी ने तमिलनाडु प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष के अन्नामलाई का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आधिकारिक तौर पर अन्नामलाई के इस्तीफे को मंजूरी दे दी है। इसी के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। धन्यवाद। तो दोस्तों ये आपने सुना आज का न्यूज फ्लैश। एबीएस के नए अनुमानित आंकड़ों के अनुसार ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या

0: 28 मिलियन तक पहुंच गई है और ये लगभग हर 1 मिनट 15 सेकंड में एक व्यक्ति की दर से बढ़ रही है। इस तेज वृद्धि का मुख्य कारण माइग्रेशन है और पहली बार भारत में जन्मे लोग अब देश का सबसे बड़ा समुदाय बन गए हैं। इस अंश में हम भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई निवासियों से जुड़ रहे हैं ये समझने के लिए कि वे इस तेज जनसंख्या वृद्धि को कैसे देखते हैं।
1: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं नताशा कॉल SBS हिंदी टीम से और आज हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की बढ़ती जनसंख्या के बारे में। तो इस जनसंख्या में कितनी बढ़ोतरी हुई है, इसके पीछे असली वजह क्या है, क्या ये बढ़ती जन्म दरें हैं या फिर नेट ओवरसीज माइग्रेशन। ऑस्ट्रेलिया ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स यानी ABS के अनुमान के अनुसार देश की जनसंख्या अब 28 मिलियन के आंकड़े तक पहुंच चुकी है। ABS की पॉपुलेशन क्लॉक के मुताबिक ये महत्वपूर्ण पड़ाव इस साल 2 जून को दर्ज किया गया। ये अनुमान 1 जुलाई 2025 को तय की गई जनसंख्या वृद्धि पर आधारित है। इस गति से देखें तो ऑस्ट्रेलिया की आबादी में औसतन हर 1 मिनट 15 सेकंड में एक व्यक्ति जुड़ रहा है। हाल के वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या वृद्धि का सबसे बड़ा कारण नेट ओवरसीज माइग्रेशन बताया जा रहा है। मार्च में जारी ABS के आंकड़ों के अनुसार सितंबर 2025 तक के 12 महीनों में देश की जनसंख्या में हुई कुल वृद्धि का 73% हिस्सा यानी लगभग 3,11,000 लोग नेट ओवरसीज माइग्रेशन के कारण बढ़ा। वहीं नेचुरल इंक्रीज अर्थात शिशु जन्मों की संख्या में से मृत्यु की संख्या घटाने पर जो वृद्धि होती है, कुल जनसंख्या वृद्धि का 27% यानी लगभग 1,12,600 लोगों के बराबर रही। मार्च में जारी ABS के आंकड़ों के अनुसार 30 सितंबर 2025 तक के वर्ष में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में सबसे तेज जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई। राज्य की आबादी 2.2% बढ़ी यानी लगभग 66,000 लोगों की वृद्धि हुई। क्वींसलैंड और विक्टोरिया दोनों की जनसंख्या में 1.7% की बढ़ोतरी हुई। इस दौरान क्वींसलैंड में लगभग 97,300 और विक्टोरिया में 1,22,000 लोग जुड़े। नॉर्दर्न टेरिटरी की आबादी 1.4% बढ़ी जो लगभग 3,700 लोगों के बराबर है, जबकि ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी यानी ACT में 1.3% की वृद्धि दर्ज की गई यानी करीब 6,500 लोग बढ़े। साउथ ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या में 21,100 लोगों की वृद्धि हुई जो 1.1% की बढ़ोतरी के बराबर है। वहीं तस्मेनिया में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई। वहां आबादी केवल 0.3% बढ़ी यानी लगभग 1,700 लोग जुड़े। आपको बता दें ऑस्ट्रेलिया ने 2024 में 27 मिलियन की जनसंख्या का आंकड़ा पार कर लिया और ये उस समय हुआ जब अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं खुलने के लगभग 2 साल बाद नेट ओवरसीज माइग्रेशन महामारी के दौरान आई गिरावट से फिर से बढ़ने लगा। अनुमानों के अनुसार ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या 2031 तक 30 मिलियन तक पहुंच सकती है। तो आज ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल के कितने लोग बसते हैं? 30 जून 2025 तक के आंकड़ों के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले 8.83 मिलियन विदेश में जन्मे लोगों में से करीब 9,71,020 लोग भारत में पैदा हुए हैं। ये संख्या पिछले 4 सालों में ऑस्ट्रेलिया में भारतीय प्रवासन के लगातार और स्थिर रूप से बढ़ने को दर्शा रही है। ये वृद्धि मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा और कुशल प्रवासन यानी स्किल्ड माइग्रेशन जैसे रास्तों के कारण हुई है। लेकिन जैसे जैसे ऑस्ट्रेलिया एक मल्टीकल्चरल समाज बन रहा है, वहीं उसी समाज की सच्चाइयों से और आर्थिक दबावों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश भी कर रहा है। होबार्ट से एमिन जाफरी हमें बताती हैं।
2: मेरा नाम एमिन जाफरी है, मैं तस्मानिया में पिछले 8 साल से रहती हूँ। आई एम अ वेरी एक्टिव सिटीजन हियर। और जो अभी जो ABS ने अपने जो डेटा रिलीज किया है, हमें मालूम है कि ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन जो है वो 28 मिलियन हो गई है। लेकिन आप ये देखें कि तस्मानिया में जो है वो सिर्फ 0.3% इंक्रीज आया है। और अगर हम इंडियन डायस्पोरा की तरफ देखें तो ऑफकोर्स ओवर द डेकेड थिंग्स हैव चेंज्ड।

0: कम्युनिटी आ रही है, कम्युनिटी बढ़ रही है, लेकिन तस्मीनिया में बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं जिसकी वजह से लोग तस्मीनिया छोड़कर भी जा रहे हैं. मतलब जैसे हाउसिंग क्राइसिस है यहाँ पे ज्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज नहीं है. तस्मीनिया का जनरली जो एवरेज वेज है एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलिया इज वेरी लो. तो दैट्स वाई यहाँ पे इतनी ज्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज हो नहीं रहा है. ऑफ कोर्स इट्स वेरी कंसर्निंग क्योंकि तस्मीनिया की जो एजिंग पॉपुलेशन है उसको सपोर्ट करने के लिए हमें चाहिए यहाँ पे वर्कफोर्स.
1: वहीं मेलबर्न के रहने वाले नितिन साबी हमें बताते हैं,
2: अभी का डाटा ये कहता है कि इंडियन बॉर्न पॉपुलेशन जो है वो डबल हो गई है पिछले 10 सालों में. जो पहले अराउंड 4.5 लाख थी, अब वो नियरली 1 मिलियन हो गई है. और उसमें यंगेस्ट मेजर माइग्रेशन ग्रुप है इंडियन पॉपुलेशन का, जिनकी एवरेज एज 34 साल की है और सबसे हाईली एजुकेटेड भी है. स्किल्ड माइग्रेशन, इंटरनेशनल एजुकेशन बहुत जरूरी है इस कंट्री के लिए. पर कुछ कंसर्न्स, कुछ चिंतावश चीजें भी हैं, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट और आई वुड से कि अंडर एम्प्लॉयमेंट. अगर हम देखें आजकल इंजीनियर्स शेल्फ स्टैकिंग कर रहे हैं. ओवरसीज क्वालिफिकेशन को तो जैसे ऑस्ट्रेलिया मानता ही नहीं है. उसके अलावा हाउस क्राइसिंग कितने ज्यादा बढ़ गए हैं, उसका रिजल्ट आपने देखा ही है. अभी टैक्स रिफॉर्म्स ऑस्ट्रेलियन फेडरल गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए हैं. मैं खुद एक इंटरनेशनल स्टूडेंट था आज से 21 साल पहले, एंड आज हमने मेहनत के साथ, एजुकेशन के साथ, कम्युनिटी के साथ मिलके हम यहां तक पहुंचे हैं. ऑस्ट्रेलिया ने फेयर गो हमें दिया है और आगे भी देते रहेगा, पर हमारा कंसर्न ये है कि आज हमें सिस्टम को, सोसाइटी को, कम्युनिटी को जागरूक रखना है, समझाना है कि हर आदमी एक अपनी स्ट्रेंथ लेके आता है और इकट्ठे स्ट्रेंथ में हम ऑस्ट्रेलिया को आगे लेके जा सकते हैं.
1: तो जहां माइग्रेशन को लेकर हाउसिंग क्राइसिस की बात की जा रही है, वहीं महत्वपूर्ण स्किल्ड लेबर की कमी को पूरा करने में इसकी भूमिका पर भी चर्चा तेज हो रही है.
3: तो दोस्तों, इस रिपोर्ट को आप तक लेकर आई थी नताशा कॉल, और इसी से जुड़ा एक सवाल मैंने आज आपसे पूछा है. मैंने पूछा है कि जब आप ऑस्ट्रेलिया माइग्रेट करे थे तो आपको किस तरह की चुनौतियों या प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा था. भेजिए अपने जवाब मुझे, नंबर है 04397997667. और यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और लौट कर आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और सुनेंगे भारत से खबरें.
4: Sigue conectado ante lo inesperado con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Invincible Wi-Fi te mantiene conectado con internet con fibra óptica, red 5G automática y batería de respaldo de 8 horas para que nada te detenga. Trabaja, haz streaming, sigue conectado con amigos y familia, pase lo que pase. Nada te detiene con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Aplican restricciones, servicio no disponible en todas las áreas.
5: I think the engine's stalling out on me.
6: Yeah, that don't sound right.
5: Dang, got a lot more miles to go.
6: Nah, be okay, mate. You ride with GEICO Motorcycle Insurance and got their 24/7 emergency roadside service. They'll be here with a tow in no time.
5: Good, because these boots weren't made for walking.
6: Those riding boots are pretty sweet.
5: Oh, you like?
6: Do you think they come in a size 1 inch?
5: I don't know.
7: It feels good to ride with help. It feels good to GEICO. Emergency roadside service is optional coverage.
8: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
9: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
3: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद SBS हिंदी के कार्यक्रम पर आप

0: का बहुत बहुत स्वागत है जहां आप जुड़े हुए हैं मेरे यानी भव्या पांडे के साथ। वक्त हो रहा है 5:17 और आपको बता दूं कि आप SBS हिंदी की जो वेबसाइट है यानी sbs.com.au/hindi पर जाकर हमारे सभी अंश और कार्यक्रम फिर से सुन सकते हैं। साथ ही हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हैं, तो यदि आपने हमें अभी तक वहां फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जाएं और हमें फॉलो कर लें। चलिए और भी खूब सारी बातें करेंगे और आपके लिए एक बढ़िया सा गाना लेकर आऊंगी, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि भारत में क्या कुछ चल रहा है हमारी इंडिया रिपोर्ट में।
1: भारत और वेनेजुएला ने अपने आपसी रिश्तों को बढ़ाने पर सहमति जताई है। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज इन दिनों भारत के दौरे पर हैं। गुरुवार को उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक हुई। इस दौरान संबंधों को गहरा करने और द्विपक्षीय साझेदारी को गति देने पर दोनों नेताओं ने सहमति जताई। द्विपक्षीय वार्ता के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बातचीत का ब्यौरा मीडिया के साथ साझा किया। मंत्रालय में सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि एनर्जी सेक्टर में साझेदारी बढ़ रही है। वेनेजुएला तीसरे सबसे बड़े आपूर्तिकर्ता के रूप में उभर चुका है।
2: वेनेजुएला इज पोजेसेस वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स इन द वर्ल्ड। द इंडियन इकोनॉमी इज अ लार्ज एंड ग्रोइंग कंज्यूमर ऑफ ऑयल एंड विल हैव अ स्टेबल डिमांड ग्रोथ फॉर मेनी इयर्स टू कम। Thus, in the energy sector, we see a perfect complementarity. In fact, in our spot purchases, Venezuela has already emerged as the third largest supplier this month. So quite naturally, today's discussions focused on forging an energy partnership. What did emerge from the interaction of the two leaders was that Venezuelan energy sector is undergoing a fundamental transformation. They see India as a stable demander for many years to come.
1: द्विपक्षीय वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने सहयोग के अन्य क्षेत्रों पर भी चर्चा की है। इस बारे में रुद्रेंद्र टंडन बताते हैं।
2: Venezuela is a very large country which is resource rich, has talented, hardworking people. That is now showing the first signs to moving to a path of sustained growth. So there are huge opportunities, not just in the energy sector, but also in areas like mining, in areas like animal husbandry, transportation, agriculture equipment, automotive sector, and pharmaceuticals. These two were discussed. And the whole idea was to try and work out ways in which Indian commercial entities can enter the Venezuelan market successfully and a new partnership in these areas can be forged.
1: पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद राज्य की भाजपा सरकार ने केंद्र की सागरमाला परियोजना से जुड़ने की घोषणा की है। गुरुवार को मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने पिछले सरकार के समय सागरमाला प्रोजेक्ट से दूर रहने की आलोचना की।
3: पिछले सरकार जिस तरीके से भारत सरकार का इतना अच्छा अच्छा प्रोजेक्ट जिनका बेनिफिट दूसरा प्रदेश ने लिया है, हमारी प्रदेश ने पश्चिम बंगाल को वंचित हुआ है ड्यू टू पॉलिटिकल इल मोटिव और नॉन कोऑपरेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये बहुत क्षति हो गया है। वो सब पास्ट इज पास्ट, नाउ हम लोग को गो हेड करना पड़ेगा। हम लोग आभारी हूं देश के प्रधानमंत्री के ऊपर, उन्होंने सागरमाला 2 प्रोजेक्ट का इजाजत दे दिया, इसलिए हम लोग बहुत आभारी हूं। सागरमाला 1 का जो बेनिफिट दूसरा प्रदेश को मिला है, पश्चिम बंगाल की पिछले सरकार उसका बेनिफिट हमारी प्रदेश की जनता को नहीं दिया है।
1: कोलकाता में वाटर मेट्रो सेवा भी शुरू की जाएगी। देश के 18 शहरों में यह सेवा पहले से ही है। राज्य में चुनाव के बाद भी राजनीतिक गहमा गहमी कम नहीं हो रही है। सत्ता से बाहर होने के बाद टीएमसी में फूट बढ़ गई है। 80 में से लगभग 60 विधायकों ने अपना अलग गुट बना लिया है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी ने जैसा कांग्रेस पार्टी के साथ किया था, अब वह उन्हीं के साथ हो रहा है।

0: Advertising.
1: ¿Por qué elegir entre velocidad, confianza y buen precio si con Spectrum Internet con fibra óptica puedes tenerlo todo por solo $40 al mes? Sin contratos, sin compromisos. Solo Internet increíble a un precio increíble. Cámbiate hoy y obtén Spectrum Internet con fibra óptica por solo $40 al mes. Visita spectrum.com/todo. Spectrum Internet funciona con tecnología de fibra y se conecta al domicilio mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
2: एकनाथ शिंदे की एक नया मॉडल बंगाल में चालू हो रहे हैं।
3: अधीर रंजन का दावा है कि टीएमसी के ज्यादातर आरोपी नेता भाजपा से जुड़ चुके हैं। उन्होंने आम कार्यकर्ताओं को कांग्रेस से जुड़ने की सलाह दी।
2: मैं जरूर यह सलाह देना चाहते हैं कि अभी भी समय है, अगर कुछ करना है तो सब कांग्रेस में शामिल हो जाइए। कांग्रेस आपके लोग स्वागत करने के लिए तैयार है। अच्छा हुआ कि सारे आरोपित जो नुमाइंदे है सारे बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी में सीधे तरीके से शामिल ना होते हुए भी ये अलग एक मंच बनाते हुए बीजेपी की मदद लेते हुए ही ये लोग शामिल हो रहे हैं। ये सबके लिए सबके सामने ये स्पष्ट।
3: पश्चिम बंगाल की तरह तमिलनाडु में भी सत्ता परिवर्तन हुआ है और इसका असर राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ने जा रहा है। चुनाव में हार के बाद डीएमके और कांग्रेस पार्टी का रिश्ता टूट गया है। कांग्रेस पार्टी टीवी के सरकार को समर्थन देकर राज्य की सरकार में शामिल हो गई है। इससे नाराज डीएमके ने इंडिया ब्लॉक की बैठक में शामिल नहीं होने का निर्णय लिया है। 8 जून को होने वाली बैठक में डीएमके के अलावा कुछ अन्य दल भी नदारद रह सकते हैं। और अब चर्चा पर्यावरण दिवस की, जो आज देश भर में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रयासों को लेकर जागरूकता बढ़ाने के अलावा जल जंगल को बचाने पर जोर दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश में एक पेड़ माँ के नाम अभियान चलाया जाएगा। 30 सितंबर तक चलने वाले इस अभियान की जियो टैगिंग के द्वारा निगरानी की जाएगी। उत्तर प्रदेश में पारंपरिक प्लास्टिक की जगह बायो प्लास्टिक को बढ़ावा देने के लिए आज से एक पहल शुरू की जा रही है। अन्य राज्यों में भी इसी तरह के कार्यक्रम आज आयोजित किए गए हैं। और अंत में बात मानसून की, जिसने भारत में दस्तक दे दिया है। गुरुवार को दक्षिण पश्चिम मानसून केरल पहुंच गया। आमतौर पर 1 जून को केरल पहुंचने वाला यह मानसून 3 दिन की देरी से पहुंचा है। अब अगले एक हफ्ते केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। भारत से आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं विश्वरत्न SBS रेडियो की हिंदी सेवा के लिए।
4: तो दोस्तों, ये आपने सुनी खबरें भारत से, और यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले सोचा कि आपको एक बढ़िया सा गाना सुनाती हूँ।

0: ¿Por qué elegir entre velocidad, confianza y buen precio si con Spectrum Internet con fibra óptica puedes tenerlo todo por solo $40 al mes? Sin contratos, sin compromisos. Solo Internet increíble a un precio increíble. Cámbiate hoy y obtén Spectrum Internet con fibra óptica por solo $40 al mes. Visita spectrum.com/todo. Spectrum Internet funciona con tecnología de fibra y se conecta al domicilio mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
2: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
3: sbs.com.au/hindi को अपना ऑनलाइन होम बनाइए, ताज़ा तरीन खबरें अपनी भाषा में पाइए। sbs.com.au/hindi पर जाएं। क्या आपको SBS हिंदी सुनना अच्छा लगता है? अपनी बातचीत हमसे जारी रखिए हमारे फेसबुक पेज पर, हमारा पेज लाइक करें। SBS हिंदी फेसबुक पर भी है।
4: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद SBS हिंदी के कार्यक्रम पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां आप जुड़े हुए हैं मेरे यानी भव्या पांडे के साथ। दोस्तों, आज दुनिया भर में ओजेम्पिक की बात हो रही है, लेकिन आखिर ये दवाई क्या है और वजन कम करने के लिए ये शरीर में कैसे काम करती है? क्या ये भूख और खाने की आदतों को प्रभावित करती है? इसकी सुरक्षा को लेकर क्या जानकारी उपलब्ध है और क्या ये अपने दम पर लंबे समय तक वजन घटाने में मदद कर सकती है? इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ इस अंश में जुड़ रही हैं मेडिकल विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पा वर्मा।
5: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं नताशा कॉल SBS हिंदी टीम से। आज के समय में वजन कम करना दुनिया भर में एक आम चर्चा का विषय बन गया है। मोटापा यानी अधिक वजन की समस्या के कारण लोग अलग अलग तरह के विकल्प अपना रहे हैं, लेकिन तेजी से वजन कम करने वाली दवाओं की बात करें तो ओजेम्पिक का नाम सबसे ज्यादा सुनाई दे रहा है। ओजेम्पिक आज दुनिया भर में चर्चा का विषय बन चुकी है। इसे मुख्य रूप से टाइप 2 डायबिटीज के इलाज के लिए विकसित किया गया था, लेकिन हाल के वर्षों में वजन घटाने में इसकी प्रभावशीलता के कारण इसकी लोकप्रियता काफी बढ़ गई है। लेकिन आखिर ओजेम्पिक क्या है और ये वास्तव में कैसे काम करती है? ये दवा भूख पर कैसे असर डालती है? इसकी सुरक्षा के बारे में हमें क्या पता है और क्या ये अपने आप लंबे समय तक वजन घटाने में सच में मदद कर सकती है? इस दवा को बेहतर समझने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रही हैं मेडिकल विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पा वर्मा, जिनसे हम इसके फायदे और जोखिमों पर बात करेंगे। आपको बता दें कि ये पॉडकास्ट केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से है और इसे किसी भी तरह की मेडिकल सलाह नहीं माना जाना चाहिए। तो जुड़ते हैं डॉक्टर शिल्पा वर्मा से।
6: SBS हिंदी प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर शिल्पा वर्मा जी।
7: ओह, थैंक यू।
6: तो सबसे पहले हमें ये बताएं कि ओजेम्पिक है क्या और ये कैसे काम करती है?
7: यू आर राइट, ये ओजेम्पिक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गया है, क्योंकि इट इज अ ड्रग जो वेट मैनेजमेंट के लिए ऐसे बहुत पॉपुलर हो गया है। एक्चुअली ये ड्रग टाइप 2 डायबिटीज यानी जो अडल्टहुड में डायबिटीज होता है वो टाइप 2 डायबिटीज के लिए यूज किया गया था, और उसके अलावा इट वाज सीन कि ये वेट लॉस के लिए भी अच्छा इफेक्ट कर रहा था। सो इसलिए इट्स बिकम यूजफुल फॉर बोथ वेट लॉस भी और टाइप 2 डायबिटीज। तो एक तो कैसे एक्शन करता है कि ये अपने बॉडी की एक जो GLP-1 करके एक एंजाइम रहता है, वो हार्मोन रहता है, वो अपने पेट में प्रोड्यूस होता है. एंड दिस इंजेक्शन वही है, वही हार्मोन है जो हाई डोज में दिया जाता है. एंड वो हार्मोन का इफेक्ट ऐसे है जो हम बोलते हैं ना, अपना गट और ब्रेन का कनेक्शन रहता है, इट्स वेरी सिमिलर टू दैट. तो गट में ये हार्मोन बनता है और वो ब्रेन में एक्शन करता है, जिससे लोगों की एपेटाइट सप्रेस हो सकती है एंड क्रेविंग्स कम होते हैं. जो फूड नॉइज हम बोलते हैं कि स्नैक्स करना है ये वो, उससे कम होके वो वजन कम कराता है. अदर देन दैट कुछ एपेटाइट लो भी हो जाता है, इसलिए वजन कम हो सकता है. एंड थोड़े और कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म भी होते हैं ब्रेन के हार्मोन्स में, जिसके वजह से वजन कम होता है.
6: तो जी, जो आप समझा रही हैं, बेसिकली ये ड्रग लेने से आपको, आपकी बॉडी ये कहती है, ब्रेन को ये सिग्नल देती है कि आपको भूख नहीं लग रही है, मत खाओ.
7: हाँ, और थोड़ा सा खाया तो फुल सटाइटी बोलते हैं, जो पेट भर जाता है जल्दी. जो हेल्थ इशू ओबेसिटी से ही इतनी हेल्थ इश्यूज हो सकती है ना, इसीलिए तो नाउ वी आर ट्राइंग कि वी ट्रीट इट लाइक, जैसे कि ये क्रॉनिक डिजीज है, तो उसके लिए ये इंजेक्शन इज यूजफुल, ओजेम्पिक टू ट्रीट.
6: जैसे जनरली कहा जाता है, अगर आप ओबेस हैं तो आपको हेल्थ कंडीशंस हो सकती हैं, आप यू आर मोर वल्नरेबल टू हेल्थ कंडीशन. मगर ऐसे भी लोग हैं जो ओबीस हैं और उनको कोई हेल्थ कंडीशन नहीं है, जो बिल्कुल ठीक है.
7: वो तो दैट कैन बी, इट कैन ऑलवेज एग्जिस्ट ऐसे, बट जनरली आप देखा जाए तो जो वेट एक्सेस होता है उनको हार्ट और ऑल अदर कंडीशन जरूर, स्लीप एपनिया बोलो, तो ऐसे सारे कंडीशन हो सकते हैं ज्यादा प्रमाण में.
6: जी जी. तो जो ओजेम्पिक ड्रग है, ये सिर्फ डायबिटिक लोगों को, जो इससे डायबिटीज है जिनको, उन्हीं को दी जाती है, या अब जो ओबीस है उनको भी दी जा रही है?
7: या सो ये जो है ओजेम्पिक, उसकी उसे वही ड्रग दूसरे नाम से भी मिलता है और उसको बोलते हैं वीगोवी. और ये दोनों ड्रग एक ही, दोनों मेडिकेशन जो है एक ही ड्रग है उनमें, दोनों में. और वो ड्रग, उसको सेमाग्लुटाइड बोलते हैं, उससे डायबिटीज का भी इम्प्रूवमेंट होता है, वेट में भी इम्प्रूवमेंट होता है. सो दे आर गिवन दोनों चीजों के लिए, वेट मैनेजमेंट के लिए भी और डायबिटीज. बट इट हैज टू बी गिवन वेरी स्पेसिफिकली. जैसे ऑस्ट्रेलिया में ओजेम्पिक दिया जाता है सिर्फ डायबिटीज को, क्योंकि इट्स अवेलेबल, जो हम गवर्नमेंट के PBS सब्सिडी में बोलते हैं ना, तो उससे वो ओजेम्पिक अवेलेबल होता है. बट यू हैव टू हैव डायबिटीज फॉर दैट. और जिनकी डायबिटीज कम करने के लिए, शुगर कम करने के लिए वो ड्रग दिया जाता है. और उसके अलावा दूसरी इफेक्ट, अच्छी इफेक्ट होती है कि वेट लॉस भी होता है. वाइल दी अदर ड्रग विच इज वीगोवी, वो अभी तक नहीं हुआ है अपने गवर्नमेंट सब्सिडी पे PBS पे, बट हो सकता है आ जाएगा, क्योंकि थोड़ी सी उसकी जांच चालू है. एंड दैट इज द वन जो दिया जाता है सिर्फ ओबेसिटी, यू डोंट हैव टू हैव डायबिटीज फॉर इट.
6: अच्छा जी.
7: बट ओबेसिटी के, तो वेट मैनेजमेंट के लिए. And that is available private script pe, so jyada mehenga.

0: रहता है वो।
1: जी, तो ये जो ओज़ेम्पिक ड्रग है ये क्या आपके शुगर लेवल्स भी कम करता है? फॉर एग्जांपल अगर कोई स्किनी है और जिसको डायबिटीज है वो भी ओज़ेम्पिक ले सकता है जस्ट टू कंट्रोल देयर शुगर? और
0: टाइप टू डायबिटीज में ज्यादा देते हैं, टाइप वन में अभी तक फुल इन्वेस्टिगेशंस नहीं हुए हैं, पर ट्रायल्स चालू है। बट जो टाइप वन टाइप टू सॉरी डायबिटिक्स होते हैं, और वो अगर बहुत ज्यादा वेट का प्रमाण नहीं है उनका, बट शुगर्स बहुत बढ़ी हुई है, स्टडीज किए हुए हैं ओज़ेम्पिक के उन ऐसे लोगों में, और उनकी शुगर इंप्रूव हुई है,
1: अच्छा।
0: उनमें वेट लॉस इतना ज्यादा नहीं होता है इस मेडिकेशन से उन इस सिचुएशन में। बट अगेन अपने पीवीएस पे थोड़े रिस्ट्रिक्शंस डाले हुए हैं कि किनको अलाउड है किनको नहीं, इसलिए डॉक्टर के साथ ही बात करके वो लेनी पड़ती है।
1: डॉक्टर शिल्पा हमें ये भी बताएं इसके साइड इफेक्ट्स जो ले रहे हैं उनको क्या देखने को मिल रहे हैं, किस प्रकार के उनको?
0: सो साइड इफेक्ट्स इसके काफी हो सकते हैं, बट देर आर लार्ज, इतने जन यूज कर रहे हैं ये वर्ल्ड वाइड कि देर इज काफी सारे साइड इफेक्ट्स नए आते रहते हैं। हाउएवर सबको नहीं होते हैं वो साइड इफेक्ट्स, मेन थिंग है नॉजिया, और उस नॉजिया से भी बोलते हैं कि यू नो एपेटाइट कम हो जाती है तो वजन भी कम होता है, बट दैट्स नॉट द ओनली मैकेनिज्म। दूसरी चीज है कि टमी में गट में अपने काफी यू नो कॉन्स्टिपेशन हो, डायरिया हो, यू नो जलन लाइक रिफ्लक्स, दोस काइंड ऑफ थिंग्स हो सकते हैं, ब्लोटिंग। फिर दूसरी चीजें जो है डायबिटीज में स्पेशली आंखों का जांच करना पड़ता है, क्योंकि एक चीज कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज की जिसको रेटिनोपैथी बोलते हैं, और वो जो आपने आंखों का पर्दा रहता है उस पे जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसमें चेंज हो सकता है और वर्सनिंग हो सकता है, तो इसीलिए आई चेकअप करना जरूरी है उसके पहले और लेते हुए भी। और भी पैंक्रियाटाइटिस करके एक चीज है, जो अपना पैंक्रियास करके एक ऑर्गन रहता है,
1: जी
0: उसके इन्फ्लेमेशन होने से वो पेट में सिवियर पेन या यू नो उल्टी और नौजिया ऐसे हुआ तो इमीडिएट मेडिकल अटेंशन के लिए जाना पड़ता है, तो वो भी है। एंड कई लोगों को गॉल स्टोन्स बोलते हैं ना,
1: जी
0: में स्टोन्स, वो रिस्क बढ़ सकती है उनमें।
1: बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शिल्पा हमसे आज जुड़ने के लिए और हमें ये महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए।
0: थैंक यू, इट वॉज माई प्लेजर।
2: तो दोस्तों ये अंश आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं 04397997667 पर, और लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और लौट कर आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगी और आपको कुछ बढ़िया से गाने भी सुनाऊंगी। सुनते रहें SBS हिंदी।
3: ¿Por qué elegir entre velocidad, confianza y buen precio si con Spectrum Internet con fibra óptica puedes tenerlo todo por solo $40 al mes? Sin contratos, sin compromisos. Solo Internet increíble a un precio increíble. Cámbiate hoy y obtén Spectrum Internet con fibra óptica por solo $40 al mes. Visita spectrum.com/todo. Spectrum Internet funciona con tecnología de fibra y se conecta al domicilio mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
4: East of the Pacific, making histories of Asian American art. On view now through August 16th at the Columbus Museum of Art. Featuring more than 60 works of artists of Asian descent, the exhibition explores how migration across the Pacific has shaped American art and culture. Experience the stories, perspectives, and artistic contributions that continue to influence our world. Don't miss East of the Pacific, making histories of Asian American art, now through August 16th. Plan your visit today at columbusmuseum.org.
5: Starting a new life in Australia isn't easy.
6: A lot of companies have rejected me.
7: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
5: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
8: SBS हिंदी हर समय उपलब्ध है, जब भी आप चाहें किसी भी मोबाइल पर हमारे पॉडकास्ट बिल्कुल मुफ्त सुने। sbs.com.au/hindi पर जाएं या SBS ऑडियो ऐप डाउनलोड करें।
9: Con Spectrum TV no me pierdo ni un partido, porque tengo todas mis aplicaciones favoritas juntas.

0: ¡Golazo! Más TV en vivo y todos los canales de deportes. ¡Se va! ¡Se va! ¡Se fue! Todo en un mismo lugar sin pagar extra. ¡Canasta! Un plan, un precio, un lugar y todos sus deportes. Visita spectrum.com/todatuTV para más información.
1: तो दोस्तों ब्रेक के बाद SBS हिंदी के कार्यक्रम पर आपका बहुत बहुत स्वागत है जहां आप जुड़े हुए हैं मेरे यानी भव्या पांडे के साथ। तो दोस्तों इस आने वाले अंश में हम जानेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में किस तरह से जो शादी है वो केवल एक समारोह नहीं लेकिन अब बहुत कुछ बदल गया है। इसमें सोशल मीडिया का भी एक नया रोल आ गया है, किस तरह से सिनेमेटोग्राफी इसमें देखी जा रही है। इन सभी बातों को विस्तार से समझने के लिए इस रिपोर्ट को आप तक लेकर आ रही हूँ नबील हसन के साथ।
2: ऑस्ट्रेलिया में साउथ एशियन कम्युनिटी तेजी से बढ़ रही है और इसके साथ ही शादियों का पूरा अंदाज भी बदल रहा है। इंडिया में शादियां हमेशा से ग्रैंड और बेहद रौनक भरी रही हैं और अब ऑस्ट्रेलिया में बड़ी साउथ एशियन डायस्पोरा के साथ वही वाइब यहां भी रिक्रिएट की जा रही है। आज शादियां सिर्फ एक ट्रेडिशनल सेरेमनी नहीं रह गई बल्कि ये एक कंप्लीट एक्सपीरियंस बन चुकी हैं जिसमें सिनेमैटिक स्टोरी टेलिंग, सोशल मीडिया रील्स, डिजाइनर आउटफिट्स और पर्सनलाइज्ड स्टाइलिंग की बड़ी भूमिका है। SBS हिंदी पर मैं हूं नबील हसन। आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया में बढ़ती साउथ एशियन वेडिंग इंडस्ट्री की और समझेंगे कि कैसे बदल रही है कपल्स की एक्सपेक्टेशंस, क्या है नए ट्रेंड्स और किस तरह ये सेक्टर क्रिएटिव प्रोफेशनल्स के लिए नए अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट कर रहा है। सबसे पहले बात करते हैं रॉबी से जो एक वेडिंग स्टोरी टेलर है। रॉबी और उनकी टीम वेडिंग्स को फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के जरिए एक स्टोरी टेलिंग अप्रोच में डॉक्यूमेंट करते हैं। उन्होंने पिछले दो डेकेड्स में खासकर साउथ एशियन वेडिंग फोटोग्राफी को ऑस्ट्रेलिया में इवॉल्व होते हुए देखा है।
3: साउथ एशियन वेडिंग में फोटोग्राफी मतलब पहले था कि एक फॉर्मल एल्बम, पूरी फैमिली की पोज, तस्वीरें और एक USB में सारा डाटा। फैमिलीज बस यही चाहती थी लेकिन अब सीन बिल्कुल ही अलग है। आज कपल खुद से रिसर्च करते हैं, पिंटरेस्ट बोर्ड बनाते हैं, रेफरेंस लाते हैं। उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत रिफाइंड हो गई हैं। पहले सिर्फ पेरेंट्स डिसाइड करते थे कि फोटोग्राफर कौन होगा, अब ब्राइड और ग्रूम की अपनी विजन होती है। ये एक बहुत ही बड़ा शिफ्ट है। आज अगर आप सिर्फ फोटोज डिलीवर करते हो तो आप पीछे रह जाते हो। कपल चाहते हैं कि एक 3-4 मिनट का सिनेमैटिक ट्रेलर हो जो उनकी लव स्टोरी को एक शॉर्ट फिल्म की तरह बताए। सोशल मीडिया में इस डिमांड को और बढ़ा दिया है।
2: क्या आपको लगता है कि वेडिंग इंडस्ट्री अब सिर्फ एक सर्विस नहीं बल्कि एक प्रॉपर प्रोफेशन बन रही है जिसमें क्रिएटिव लोगों के लिए नए अपॉर्चुनिटीज हैं?
3: मैं ये बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि पहले लोग फोटोग्राफी को एक साइड गिग समझते थे, कोई भी कैमरा लेके निकल पड़ता था, लेकिन आज एक ये सीरियस क्रिएटिव प्रोफेशनल लोग डेडिकेटेड कोर्सेज करते हैं, गियर में कई हजारों डॉलर इन्वेस्ट करते हैं, अपना फिर ब्रांड बिल्ड करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में तो स्पेशली यंग साउथ एशियन प्रोफेशनल अब इस फील्ड में फुल टाइम करियर देख रहे हैं। ये जनरली एक्साइटिंग टाइम है पूरी इंडस्ट्री के लिए।
2: जी अच्छा, एक जनरल सेंस के लिए साउथ एशियन वेडिंग्स में ऑस्ट्रेलिया में लोग फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर रफली कितना खर्च करते हैं और क्या ये कॉस्ट बढ़ रही है या कंपटीशन के चक्कर में कम हो रही है?
3: देखिए ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जनरली स्पीकिंग एक डिसेंट साउथ एशियन वेडिंग पैकेज ऑस्ट्रेलिया में रफली 5,000 से लेके 15,000 या उससे भी ऊपर भी जा सकता है डिपेंडिंग ऑन की कवरेज आवर्स, टीम साइज और डिलीवरेबल्स। और यहाँ क्वालिटी के लिए कॉस्ट बढ़ रही है। जो प्रोफेशनल सीरियसली काम कर रहे हैं जैसे सिनेमैटिक प्रोडक्शन और एरियल शॉट्स, सेम डे एडिट्स एंड प्रीमियम एल्बम्स, उनके रेट्स नेचुरली हायर हैं। हाँ कॉम्पिटिशन भी है और कुछ लोग प्राइस कम करके काम भी लेते हैं लेकिन एक्सपीरियंस कपल समझते हैं कि ये एक बार का मोमेंट है, इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करते।
2: वेडिंग एक्सपीरियंस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट फैशन और स्टाइलिंग भी है। इस पर हमने बात की आयुषी से जो ऑस्ट्रेलिया में एक लग्जरी इंडियन एथनिक मल्टी डिजाइनर स्टोर रन करती हैं। वो बताती हैं कि कैसे अब हर सेलिब्रेशन में एक नहीं बल्कि मल्टीपल फंक्शंस होते हैं और वेडिंग फैशन अब ज्यादा पर्सनलाइज्ड और एक्सपीरियंस ड्रिवन हो गई है।
4: आई फील जैसे आपने कहा कि पहले कपल्स एक या दो आउटफिट लिया करते थे, बट आई फील कि ब्राइडल ट्रूजो जो एक शब्द है जो कि बहुत समय से चला आ रहा है स्पेशली इन आवर कल्चर, इन आर साउथ एशियन कल्चर,

0: का जोड़ा, विदाई का जोड़ा, ये सारी चीजें बहुत ही ऑथेंटिकली स्ट्रांगली हमारे कल्चर में हमेशा से रही हैं। आई फील इट्स जस्ट द विजिबिलिटी पार्ट कि हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं, हम देख सकते हैं लोग क्या पहन रहे हैं, क्या कर रहे हैं। उसके कारण ऑफकोर्स एक एडवांसमेंट जरूर आ गया है, लेकिन मुझे लगता है कि हमेशा से ये सारी चीजें रही हैं इन आ कल्चर। क्योंकि जैसे कि अगर आप देखें तो पहले भी विदाई का जोड़ा अलग होता था। इनफैक्ट मुंह दिखाई का, पहली रसोई का, हर चीज हमेशा से होती थी। बट ऑफ कोर्स अब फैशन में जो एक प्रोग्रेशन आ गया है, उसके कारण अब ऑप्शंस बहुत ज्यादा है, अब विजिबिलिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि लोग पोस्ट करते हैं उन आउटफिट्स के बारे में।
1: आयुषी, आपके एक्सपीरियंस में ऑस्ट्रेलिया में साउथ एशियन कपल्स अपने आउटफिट्स में ट्रेडिशन और मॉडर्न स्टाइल का बैलेंस कैसे बनाते हैं?
0: आई फील कि जैसे कि एक ब्राइड आती है, उसे पहनना है एक बहुत बहुत ही प्यारा कल्चरल ट्रेडिशनल लहंगा जो उन्होंने बचपन से देखा हुआ है, फैशन में देखा हुआ है सबको पहनते हुए। लेकिन उसका जो कलर है, इफ शी चेंजेस इट टू अ नॉन ट्रेडिशनल कलर, लाइक रेड को हटाकर कोई पेस्टल कर लिया, या उसका ब्लाउज कट डिफरेंट कर लिया, या हल्दी मेहंदी में सलवार सूट पहनने की जगह एक जंप सूट पहन लिया बट उसका कलर सेम रखा, येलो या ग्रीन, तो वो जो एक प्यारा सा ब्लेंड निकल कर आता है, दैट इज अमेजिंग, दैट इज वेरी ब्यूटीफुल। बहुत फ्रेश एक आउटलुक दिखता है एंड आई फील वो बहुत ज्यादा हमारे साउथ एशियन कम्युनिटी में हम देखते हैं।
1: अच्छा, डिजिटल एरा में अब कपल्स इन्फ्लुएंसर्स इंस्टाग्राम रील्स और ट्रेंडिंग लुक्स को काफी फॉलो करते हैं, क्या आपके पास भी ऐसे रिक्वेस्ट आती है जहाँ लोग एग्जैक्ट लुक या स्टाइल रिक्रिएट करना चाहते हैं?
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी ब्राइड्स आती हैं एंड दैट इज एक्चुअली अ फर्स्ट क्वेश्चन कि आपके पास कोई इंस्पिरेशन है क्या, जब ब्राइड या कोई ग्रूम आते हैं फॉर द ब्राइडल आउटफिट और फॉर द इवेंट्स आउटफिट। एंड कई बार ऐसा होता है कि दे हैव लाइक एन एग्जैक्ट फोटो कि हाँ मुझे बिल्कुल यही लुक चाहिए, यही हेयर स्टाइल चाहिए, एंड इट्स ब्यूटिफुल कि अच्छा ठीक है, दे आर प्रिपेयर्ड, दे विजुअलाइज्ड इट एंड वो क्लियर है। बट ऑल्सो ऑलवेज ट्रस्ट द प्रोसेस, जो चीज आपके सामने है उसे आप ट्राई करो, उसके साथ एक्सपेरिमेंट करो, क्योंकि यू नेवर नो, आपने जो फोन पे देखा होगा वो किसी पे अच्छा लगा होगा लेकिन आप पे कुछ और ही बिल्कुल अच्छा लगे, क्योंकि इतने सारे ऑप्शन है ट्राई करने के लिए। तो मैंने ऐसे देखा है कि ब्राइट लेकर तो कुछ कम्प्लीटली डिफरेंट आई है लेकिन वो लेकर कुछ कम्प्लीटली डिफरेंट गई है।
1: जब बात होती है लार्ज स्केल वेडिंग्स की तो प्लानिंग और एग्जीक्यूशन भी उतना ही जरूरी हो जाता है। इस पर हमने बात की मेलबर्न बेस्ड वेडिंग प्लानर गुनीत से, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में साउथ एशियन वेडिंग्स के बढ़ते स्केल के बारे में अपनी राय रखी।
2: ऑस्ट्रेलिया में साउथ एशियन वेडिंग्स का स्केल काफी इवॉल्व हुआ है। आज कपल सिर्फ वेन्यू और केटरिंग पर फोकस नहीं करते बल्कि ओवरऑल गेस्ट एक्सपीरियंस पे बहुत ध्यान है और वो काफी इन्वेस्ट भी इस पर कर रहे हैं। प्लस मैं देख रही हूँ कि डेकोर और स्टाइलिंग पर भी काफी फोकस बढ़ा है, पर्सनलाइज थीम्स, ताकि हर फंक्शन का अपना यूनिक लुक और फील हो। ब्यूटिफुली डिजाइंड स्पेसेस क्रिएट करना चाहते हैं, कस्टम इंस्टॉलेशन भी हो रही हैं। एंड अगर आप दूसरी तरफ देखें, फोटोग्राफी पर देखें, तो कपल्स चाहते हैं कि उनकी वेडिंग स्टोरी ब्यूटिफुली कैप्चर्ड हो और वो मेमोरीज लॉन्ग टर्म प्रिजर्व कर सकें। फैशन साइड पर भी डिजाइनर एथनिक वेयर और कस्टम स्टाइलिंग पे काफी फोकस हो रहा है आजकल। अगर आप देखें पहले ब्राइडल ड्रेस, जब ब्राइड अपनी ड्रेस पहनती थी तो पिनअप कोई भी कर देता था, बट आजकल अब स्टाइलिंग प्रोफेशनल्स आ गए हैं जो अच्छे से ड्रेसअप पिनअप करेंगे, आपकी ज्वेलरी सेट करेंगे। सो इन चीजों का ट्रेंड काफी बढ़ गया है। ओवरऑल कपल्स उन एलिमेंट्स को सबसे ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं जो उनकी सेलिब्रेशन को यूनिक बनाए और गेस्ट के लिए भी एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस क्रिएट करें। इसी ट्रेंड को देखते हुए हम पिछले 3 सालों से वेडिंग शोकेस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जहां कपल्स को वेडिंग इंडस्ट्री के लीडिंग वेंडर्स, लेटेस्ट ट्रेंड्स और फ्रेश आइडियाज एक ही प्लेटफॉर्म पर देखने और कनेक्ट करने का मौका मिलता है। 21 जून को पुलमन अल्बर्ट पार्क में भी एक शोकेस हमने ऑर्गेनाइज करा है, विच कैन बी वेरी हेल्पफुल कपल्स के लिए जो अपनी वेडिंग प्लान कर रहे हैं।
1: SBS हिंदी के लिए ये रिपोर्ट आपके लिए प्रस्तुत की नबील हसन ने। इस ऑडियो पॉडकास्ट में व्यक्त किए गए विचार व्यक्तिगत हैं, SBS ना तो इनसे सहमत है और ना ही असहमत।
3: तो दोस्तों, इस अंश को आप तक लेकर आए थे नबील हसन, और जरूर बताएं हमें 04397997667 पर कि ये प्रस्तुति आपको

ऐसी लगी है। इसके अलावा एक संदेश मुझे आया है, लेकिन इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है। आज मैंने आपसे पूछा था कि ऑस्ट्रेलिया में बसते समय आपको सबसे ज्यादा परेशानी कहाँ पर हुई, जिसका जवाब इन्होंने दिया है और लिखती हैं, माय हस्बैंड्स बिगेस्ट चैलेंज वाज अंडरस्टैंडिंग स्लैंग्स एंड माय वाज नॉट फाइंडिंग गुड हलाल फूड ऑप्शंस। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जब आप भारत से ऑस्ट्रेलिया आते हैं तो खान पान और सभी तरह की जो चीजें होती हैं उनमें बहुत ज्यादा फर्क होता है, और वक्त लगता है समझने में कि कहाँ पर आपके लिए बहुत सही ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और जो जहां तक भाषा की बात है, वो तो मुझे लगता है अभी भी मैं रोज कुछ नया समझ ही रही हूँ, सुन ही रही हूँ। तो आपके संदेश के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और अगली बार से जब भी आप अपना संदेश मुझे भेजें तो अपना नाम जरूर लिख दें। और इसी के साथ अब वक्त हो चला है आपको कुछ बढ़िया से गाने सुनाने का, और क्योंकि आज बात हुई है शादियों की, तो सोचा उसी वाइब से संबंधित आपको एक गाना सुनाती हूँ।

दोस्तों एक और संदेश मुझे आया है जफर जी की ओर से, जो लिखते हैं, भव्या जी थैंक्स फॉर गुड एंड बैलेंस्ड प्रोग्राम विद लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, और अपना फेवरेट गाना भी बता रहे हैं, तेरी याद दिल से भुलाने चला हूँ। तो कोशिश करूंगी कि कल के कार्यक्रम में आपका ये गाना हम बजा सकें, और आपके संदेश के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी श्रोता भी जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं फ्राइडे की शाम, मुझे 04397997667 पर अपने संदेश जरूर भेजें।

तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का SBS हिंदी और मेरे यानी भव्या पांडे के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ ग्रेट वीकेंड। और आप सभी को बता दूं कि आज के शो से संबंधित यदि कोई भी सुझाव हो तो आप हमें भेज सकते हैं। नंबर है 04397997667। और जाने से पहले कोशिश करूंगी कि आपको एक और बढ़िया सा गाना सुना के जाऊं।

0: दोस्तों जो तुहानू भी यह गाना पसंद आया या फिर सुनना चाहते हो तुसी भी अपनी मनपसंद का कोई गाना तो एस एम एस करके जरूर भेजो जी अपने मनपसंद गाने की फरमाइश। एस एम एस करने लिए नंबर है 0439799767 0439 799 767 ते हुण वेला हो गया जी साडी अगली रिपोर्ट दा अगली पेशकारी दा जो कि है PCOS बारे। PCOS एक बीमारी दा नाम सी जिन्नू हुण बदल दित्ता गया पर अजिहा क्यों कीता गया आओ सुणदे हां जी इस बारे रिपोर्ट।
1: SBS साउथ एशियन उत्ते SBS पंजाबी।
2: प्यारे दोस्तों पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम PCOS एक हार्मोन असंतुलन है जो हर 8 विचों एक औरत नूं प्रभावित करदा है अते दुनिया भर विच लगभग 17 करोड़ औरतां इस तों पीड़ित हन। एक नवी पहलकदमी विच अंतरराष्ट्री खोजकारा ने 14 साल दी खोज अते 22,000 औरतां दा सर्वेखण करन तों बाद PCOS दा नाम बदल के पॉलीएंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम PMOS रख्या है। इस अंतरराष्ट्री कमेटी विच आस्ट्रेलिया दी मोनैश यूनिवर्सिटी दे खोजकार मौजूद सन जिन्हां दा कहना है कि नवा नाम इस बीमारी अते इस दे प्रभावां नूं बेहतर तरीके नाल दर्शाउंदा है। पर इस कंडीशन दा नाम आखिर बदलिया क्यों गया अते की नवे नाम नाल इलाज करना सौखाला होवेगा